0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थीं बुलबुल दत्ता। हिंदुस्तानी संगीत के तहत और भक्ति संगीत के समापन अंश में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और श्यामा संगीत। कलाकार हैं देवाश्री मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है ये श्यामा संगीत, कलाकार देवाश्री मुखोपाध्याय।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Bulbul Datta. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. We conclude the concert with Shyama Sangeet by our artist Deboshree Mukherjee.

0: ಜನನಿ
1: ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. कलाकार हैं कौशिक चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चित्तरंजन दुलोई. तो ये प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार कौशिक चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन music. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our next artist Kaushik Chattopadhyay, accompanying on the harmonium Chittaranjan Dalui. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our artist Kaushik Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरव में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव में ख्याल गायन, कलाकार ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला।

0: राग भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जॉयदास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भैरव बाय ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय, एकॉम्पैनिंग ऑन द तबला जॉयदास गुप्ता एंड ऑन द हारमोनियम Ratan Natta. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल पर। आज के हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं ठुमरी दादरा गायन। कलाकार है विदुषी अश्विनी टिळक। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया मिश्र जौनपुरी राग में दादरा। सुनते हैं, बोल है नई छुलन की छैया बलम धूप हरिया। तो आइए सुनते हैं

0: की संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर कर नहीं पावे। दिस विल बी फॉलोड बाय अ छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर दिन गए बीत सुख के। ही इज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटिया सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और ये अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ताल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घुंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। He was accompanied on tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है विजय कोपरकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मालकम, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है हे श्याम माधो राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सोवन देरे अब, और सुनते हैं तराना। संगत तबला विनायक फटक, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस। आपके साथ तबले पर थे विनायक फटक, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोरे मन बसो राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सुर सुर से साधले रसिक। साथ संगत तबला विनायक फटक और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी भैरव। आपके साथ तबले पर थे विनायक फटक और हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ख्याल. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. आपके साथ तबले पर हैं सौमेन नंदी और हारमोनियम संगी हैं सनातन गोस्वामी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ख्याल. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the Rag Jog. Our artist is Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying our artist on the tabla is Shomen Nundi and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khayal in the Rag Jog. Our artist, Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर संगीत है सौमेन नंदी और हारमोनियम संगीत है सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार हैं सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर हैं सुजीत कुमार दास। लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार हैं सपन मजुमदार।
1: You were listening to Khayal in the Raag Jog. Our artist was Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying our artist on the tabla was Shomen Nundi and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist is Shopon Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Sujit Kumar Das. Listen now to the guitar in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist, Shopon Mojumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सपन मजुमदार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुजीत कुमार दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग गोरख कल्याण। आवर आर्टिस्ट वॉज सपन मजुमदार। Accompanying our artist on the tabla was Sujit Kumar Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट we conclude the veena recital by vidwan d srinivas in the broadcast of ravi vasariya akhila bharatiya sangeet sabha. He was accompanied on mridangam by shri yashwant hampiholi and on ghatam by shri m chandrakant. This concert was recorded at the studios of akashvani hyderabad for ravi vasariya akhila bharatiya sangeet sabha and was brought to you from the delhi station of akashvani.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल।

ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

ख्याल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है पंडित शशचंद्र का सितार वादन. सबसे पहले आप राग जौनपुरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भक्ति संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग किरवानी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र कजाया सितार पर राग की रवानी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे सितार पर बजाया राग गारा में एक धुन से, जो कि दादरा में निहित है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सह थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग गारा में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे शीतल प्रसाद मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं झूलत राधा प्यारी और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बावरी भई पिया बिना. तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.

0: लीजिए अब सुनिए उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हड़ा। विलंबित रचना एक में निबद्ध है बोल हैं दिन बीत गए, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल शी नाउ प्रेजेंट्स राग कौसी कान्हड़ा। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स लंबित ख्याल सेट टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस विलंबित ख्याल आर दिन बीत गए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस आर काहे करत मोरी बरजोरी।

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग कौंसी कांढरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कौंसी कांढरा संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन, ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। This program was a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित संजीव अभ्यंकर ने गाई इस भक्ति रचना से।

पंडित संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली पारंपरिक भक्ति रचना आइए सुनते हैं आरोही राजूरकर के स्वर में।

आरोही राजूरकर ने गाई ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री मलिक के स्वर में ये भक्ति रचना।

श्री मलिक ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब संत मुक्ताबाई रचित एक पारंपरिक गौरण सुनते हैं।